0: मुर्गाबी
1: मौसम कैसा है?
2: We have a meditation room complete with sound system.
3: अच्छा, और मछली?
1: Sardine?
2: Yes, of course.